0: You are number one.
1: ये क्या?
2: तोहफा.
1: तोहफा? तोहफा तो मुझे देना चाहिए था.
2: तुमसे तोहफा मैंने ले लिया है.
1: जी, मुझसे?
2: तुमसे, तुम्हारी टीचर.
1: जोकर, इसका क्या करूं?
2: इसे अपने पास रखो. मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्ही को लौटा रहा हूं.
1: जी, मेरे लिए?
2: देखो, एक दिन राजू बड़ा होगा, लेकिन जोकर राजू ऐसा ही रहेगा, भोला, मासूम. इसे जिसके हवाले करना, सोच समझ कर करना. दुनिया में जोकर के साथ जो करता है, मजाक करता है,

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: Oud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मैं

आई बहारों की शाम मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म वापस से गीत आप सुने। इट्स यू आर उज्जाला रेडियो।

सारा जमाना हसीनों का दीवाना। इसके बाद अब आप एक गीत सुनेंगे लता जी की आवाज में, फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

अल्लाह, ये अदा कैसी है इन हसीनों में। लता जी की आवाज में आप सुने फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त। En u luistert naar de leukste en gezelligste radio, Ojala Radio.

फैफी कॉल से, जो मैं लेकर मैं सीता बीफर कभी ना निकली, या तो ममता शर्मा एंड वाजीत से आप इस गीत को सुनें।

प्यार हुआ इक्वल राड हुआ और फिर भी क्यों डरता है दिल, लता जी के साथ मन्ना दी से आप सुने गीत। फिल्म का नाम श्री 420। और सुनने वालों, अभी हमने कहा कि ये आखिरी गीत होंगे आज का प्रोग्राम में, लेकिन अभी कुछ समय और बाकी है तो एक गीत और सुना देता हूँ।

हे सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sono Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जय बरिखे स्टूडियो नार ओंस स्टूडियो हाँ विल जय बरिखे स्टूडियो नार ओंस स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनबलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप हरी को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है, जिनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप हरी की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 0309 08 07। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं आज का प्रोग्राम में। वेल, आज का प्रोग्राम में कुछ मिले जुले संगीत से हम आप सभी को खिदमत करने वाला हूं और जो गाना प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं

वेल इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वाले, यही आशा है, उम्मीद है जिस तरह से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, सजा रहे हैं, आप सभी को पसंद भी आते होंगे।

वेल यार, जो दिल दिल का नशा है, जो दिल का नशा है वो है पहली बार। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज में, सुना है यार पहली दफा, जो दिल का नशा।

देखिए कुछ तो बता प्रीतम एंड जुबिन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष और आप हर एक को एक शुभ दिन।

जो मिला सब कुछ हो गया मुश्किल। अविश्वास से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने के और प्रीतम के आवाज में, फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे हमारे प्यारे सुनने वालों, यार उजाला रेडियो का प्रोग्राम तू जो ना मिला।

बल यार तेरा होने लगा हूं जब से तू मिली है। आतिफ असलम एंड अलीसा चिनॉय की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे हमारे प्यारे सुनो लोग

live vanuit de hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala, इस वन हेल नीलांग, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, चंगेज़ खान फिल्म से गीत को आप सुने, और ये उजाला रेडियो है।

संगीत प्रेमियों, संगीत के इस सफर में उजाला रेडियो पर एक और खूबसूरत नगमा पेश है आपके लिए।

उजाला रेडियो, आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

0: Vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, I'm Katrina Kaif.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
8: Raza Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तू यार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

चला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

चलिए सुनने वालों, हम प्रोग्राम में एक नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं और भी संजय जोधा की आवाज में पेश किए जा रहे हैं। एन संजय जोधा ओ कमेज ऑफ 29 एंड 30 अगस्त उजालास ब्रासा फेस्टिवल इंडिया इवेंट सेंटर संजय जोधा मेट एक्सक्लूसिव

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

आठ बजकर आठ मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। सभी प्रिय सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब है। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब है। 16 तारीख आज जुलाई है और बृहस्पतिवार का दिन दोनदाख इसत 2026 आपका सेवा करने चले आए हैं और वो भी अब से करीबन रात्रि में 11 बजे तक आपका सेवा हम करेंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से। दिल की आवाज में मेरे प्यारे सुनो द रोमांटिक सॉन्ग्स डर्ट भरे नगमाएं सभी आज प्लेलिस्ट में शामिल है। आप के लिए हम जो पेश करने जाएंगे आज के प्रोग्राम में, प्रोग्राम हम सजा रहे हैं लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से। मेरे प्यारे सुनो वालों, बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ आज हमने सोचा फिर एक बार आप सभी का दिल बहलाने के लिए मोय प्लेलिस्ट लेकर आए हैं। उम्मीद और आशा यही हम करते हैं कि आप ही भरपूर मेरा साथ देंगे और व्हाट्सएप पर भी आप बातें मुझसे कर सकते हैं मेरी ये प्रोग्राम के दौरान 023 3 9 9 0 02 3 6 3 0 8 0। आपका व्हाट्सएप डायरेक्ट यहाँ स्टूडियो में आएंगे और जवाब भी आपको जरूर से जरूर मिलेंगे और आपकी कार्रवाई के लिए आपकी फरमाइशें जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेरे प्यारे सुनने वालों

प्यारे सुनने वालों, जब भी आपको उजाला रेडियो की जरूरत पड़ी तो आप तार कर सकते हो या तो मेल कर सकते हो। तार आप करेंगे दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, दफ्तर के तार पर, सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, और वो भी 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
साथ। या तो आप लगातार 24 घंटे किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी पल और किसी भी जगह पर आप होंगे। तू सोचे तू बैतलान में बातें और तू फकांसी सुलौत के ये तो तू उजाला रेडियो को कॉन्टेक्ट करेंगे। नीरा तूफ नीत आप फकांसी पे या इंटरनेट 24 घंटे लगातार मेल के जरिए भी उजाला रेडियो को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। info@ujala.nl आप अपना शुभ नाम और आपका तार का नंबर फरमाइएगा मेल में तो उजाला रेडियो आपको तार करेगा, आपसे बातें करेंगे और मिलकर आपकी जितनी भी फरमाइश है, जितनी भी ख्वाहिश है, जितनी भी अरमान है सब पूरा करेंगे उजाला रेडियो। info@ujala.nl मेरे प्यारे सुनो, वक्त के मुताबिक हम आज ये प्रोग्राम सजाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नगमाएं आप तक हम पेश करें। तो आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे प्रिय माय फेवरेट महान कवि सॉन्ग राइटर सहीर लुधियानवी जी। सहीर लुधियानवी जी के लिखे हुए नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है मेरे प्यारे सुनने वालों। इनकी कलम से जो नगमाएं लिखा गया है अमर है, सहीर जी अमर है और ये नगमा यकीनन आप पसंद करेंगे और एंजॉय करेंगे भी सुनते वक्त, शायद आप गुनगुनाएंगे भी या खुल के गाएंगे, क्या पता। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों और वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर ये नगमा पेश कर रहा हूं आज का ओपनिंग सिलेक्शन हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में। स्वागत है, शुभ रात्रि आप सभी को कहते हैं, एंजॉय।

मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी ये चाहता ये चाहतों ने पूजा और मेरा प्यार कह रहा है कि मैं तुझे खुदा बना दूं। कोई ढूंढने मुझे भी आए तो हमें वो ढूंढ ना पाएंगे क्योंकि तुम मुझे कहीं छुपा दे और मैं तुम्हें कहीं छुपा दूं। मेरी बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन न पाए और तेरे गेंदों में छुपकर मैं जहां का ये सारे गम भुला दूं। कमाल का गीत, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, मेरे प्यारे सुनो वालों, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग भी आज का ओपनिंग सिलेक्शन जो हमने आप तक पेश किया है। तमाम अल्फाजे हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ ये नगमा है और किशोर कुमार अपनी खूबसूरत आवाज में, अपनी रोमांटिक आवाज में गीत गाकर सुनाए हैं आज का ओपनिंग सिलेक्शन फ्रॉम द मूवी दाग। मेरे प्यारे सुनने वालों, 19 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर, स्वागत है आप सभी का, मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। मेरे प्यारे सुनने वालों, फनाह सेस्टी न्यूली दोनदाख, मौका फिर मिला है आपका सेवा करने का और वो भी खूबसूरत प्रोग्राम दिल की आवाज जो हम पेश कर रहे हैं जिसमें है खूबसूरत नगमाएं, आपका सेवा हम करेंगे रात्रि में 11 बजे तक। बस आप अपना झलक दिखला दें तो बात बन जाएंगे। समीर का लिखा हुआ गीत और हिमेश रेशमिया।

यहाँ झलक दिखला जा मेरे प्यारे सुनने वालों, और एक बार आजा आजा आजा, क्योंकि दीदार को तरसे मेरी आँखियाँ, और हमारे ये दिन ना गुजरे ना कटे ये रतियाँ। ऐसा होता है मेरे प्यारे सुनने वालों की कहीं पे किसी भी मोड़ पर आप कहीं गए, किसी को देखा, पसंद किया, पापरे दादा तू फलीफ हो गए ले, आपका ये दिल एकदम फिदा उस पर, लेकिन बताया नहीं, इजहार तो आप करेंगे नहीं हो क्योंकि आप पर डरपोक है। फिर आप वापस जाते हैं घर, आप सो नहीं सकते, लेकिन उसको देखना चाहेंगे, उससे बातें आप करना चाहेंगे, इजहार करना चाहोगे, प्यार करना चाहोगे। बस यही ख्याल में आपका जो रात है नहीं कटते, और आपका दिन जो है नहीं गुजरते ना रात कटते हैं, बस सिर्फ उनकी ख्याल है। इस तरह का एक नगमा है मेरे प्यारे सुनो, होता है हकीकत में भी ये सब होता है कि आप कहीं जाएं, किसी को देख ले, पसंद करे, सोमह मैं खेन खसप्रकत फूर, बस देख ले फिदा हो जाते हैं। अरे बाप रे इतना खूबसूरत लड़की, अरे बाप रे इतना खूबसूरत लड़का, फलीफ हो जाते हैं। ये मैन से दी हिल मकलक एंड हिल स्नेल फलीफ वोट, तू जाने तो। फिलहाल तो ये था समीर का लिखा हुआ एक नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, काफी पॉपुलर था उन दिनों, नजर में आया, मैंने सोचा क्यों ना आज ये नगमा भी शामिल करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये भी एक हकीकत की बात है। हिमेश रेशमिया जी इनका गाया हुआ गीत फ्रॉम द मूवी अक्सर आप तक हमने पेश किया है। तुलसी कुमार और हिमेश रेशमिया का एक नगमा, ओरिजिनल गाया हुआ लेकिन विजय येसुदास और श्रेया घोषाल की आवाजों में। समीर का लिखा हुआ ये गीत पेश करने जा रहा हूं दिल की आवाज में हियर ऑन यू आर। और मेरे प्यारे से रोल दो मिनट बाकी है 8:30 में, एंजॉय। ये आंखें, ये काजल, ये बिंदिया, ये आंचल, करे क्यों मुझको बेकरार।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, श्रेया घोषाल और साथ दे रहे थे विजय यीशुदास। समीर का लिखा हुआ गीत फ्रॉम द मूवी चुपके चुपके, रोमांटिक सॉन्ग हियर ऑन यू आर, दिल की आवाज में मेरे प्यारे सुनने वालों। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते www.uchala.nl और कभी कभी आप किसी को इस तरह से देखते हैं कि मजबूरन उन्हें पूछना पड़ जाते हैं कि क्या देखते हो, एना खाया ना तू लगाते लिख कि सूरत तुम्हारी है और पता नहीं आपकी नजर कहां थी, लेकिन आप जरूर से कहेंगे मैं तो आपके सूरत देख रहा था। द ग्रेट इंडवर साहब जी का लिखा हुआ नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, महान सॉन्ग। इंडवर जी इतनी ग्रेट सॉन्ग राइटर है, इतनी महान कवि है, इनकी हाथों से लिखा हुआ इतनी सारी नगमाएं लिखा गया है जो हम पसंद भी करते हैं। हमें ये भी मालूम नहीं कि इन्होंने लिखा है, और हमें लिखने वालों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम याद करते हैं हमेशा वो जो बड़े पर्दे पर होंठ हिलाकर गीत गाते हैं, उन्हें हम देखते हैं, उस खूबसूरत गीत को एक चेहरा देता है। लेकिन लिखने वाले, गाने वाले, बजाने वाले और खास करके भी फिल्म बनाने वाले, अगर वो फिल्म बनाएंगे नहीं तो ये लिखेगा क्या, वो बजाएगा क्या और वो गाएगा क्या? तो बड़े पर्दे पर उसे चेहरा देने तो दूर की बात है, लेकिन खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी, इनकी आवाज विद नाइटिंगेल आशा जी पेश करता हूं हियर ऑन यू आर।

रोज रोज देखूं तुझे, नए नए लगे मुझको अंगों में अमृत की धारा। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, और क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी, और अगर ना हम कह दें तुम कहना सकोगे। लड़की कहता है कि भला आपकी जवाबों से ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं कुछ नियत तुम्हारी। दलेजन पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी, इन दोनों की खूबसूरत आवाजों में रोमांटिक सॉन्ग इंदवर साहब जी का लिखा हुआ फ्रॉम द मूवी कुर्बानी। मेरे प्यारे सुनने वालों, प्यार जब हो जाते हैं तो पहला हम किसी को देखते हैं उसके रूप, उसके बदन, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी गालें, उसकी बाल, उनकी जुल्फें, किसी के नैना, और खास करके ये नैना मेरे प्यारे सुनने वालों हमेशा मार ही डाल लेते हैं। ये कातिल है जो मार ही डालेंगे सभी को, और इसी पर गीत लिखा गया है समीर जी ने, द ग्रेट समीर जी, और नगमा गाएंगे शान और श्रेया घोषाल, और साथ भी देंगे शबाब साबरी जी, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। मेरे प्यारे सुनो, रिमेंबर दिस इज यू आर उजाला रेडियो, दिल की आवाज, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडाम से जो पेश हो रहे हैं। 13 मिनट गुजर चुके हैं 8:30।

परेशान और श्रेया घोषाल और साथ भी दे रहे थे शबाब साबरी। समीर का लिखा हुआ गीत, फिल्म का नाम जय हो। एंड दिस इज मेरे प्यारे सिनेमा वालों अलीशा चुनाए और स्वर्गीय सुबिन गार्ग।

क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग जो सेवा में पेश किया गया है सुबिन गार्ग मेरे प्यारे सुनने वालों और अलीशा चिनॉय की आवाजें कि दिल तू बता कहां था छुपा, क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों क्रिश, और वो भी क्रिश बहुत बने हैं, दिस इज द दर्द। मेरे प्यारे सुनने वालों, अब सेवा में आखिरी गीत हम पेश करेंगे इस घंटे का। इस गीत के बाद हम बढ़ चलेंगे 9 बजे के इश्तिहारे की ओर, और इश्तिहारों के बाद सेवा में नतुल्क हम आप सभी के सेवा में फिर हाजिर रहेंगे। हमेशा जो मुझे ऐप करते हैं, साथ देते हैं, पावर करते हैं, आज दो हमारे प्रिय सुनने वाले दोनों का जन्मदिन है, और ऐसा प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज। आपको तो मालूम है फरमाइश वाला प्रोग्राम तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक गीत निकालेंगे और आप दोनों के लिए हम चलाएंगे, और वो है सुशीला चंद्रिका सिंह जी, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और आज भी जन्मदिन है हमारे प्रिय भैया सुनील जी का, ऐतम सदम। तो सुनील जी, ऐतम सदम, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए एंड फॉर योर पावर एंड सपोर्ट ऑल टाइम। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं मेरी और उजाला रेडियो की पूरी टीम की ओर से, और सुशीला चंद्रिका सिंह जी ऐतम सल्फीन, आपको भी बधाइयां, शुभकामनाएं पूरी टीम की ओर से। ये गीत मैं सुना रहा हूँ आप सभी को, और इस गीत के बाद ब्रेक होंगे, और उसके बाद आप सभी से फिर मिलेंगे।

नई खुशियों का मौसम कि आए गम का महीना, तुम ही पे मरना तुम्हारे संग संग है जीना, कभी होना जुदा बस इतनी दुआ करना कि सांसों में कभी और दिल में कभी मेरी नजरों में रहा करना, क्योंकि ये जग जो है ये पैरी हो तो क्या

लेकिन तुम हमसे वफा करना। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी, महान कवि सॉन्ग राइटर मजरू जी, हजारे नगमाएं इनके हाथों से लिखा गया है और उनका एक हीरा हमने आप तक पेश किया है, आवाज का जादू द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशिया। फ्लॉप मूवी लेकिन नगमाएं ये फिल्म का सभी लाजवाब बेमिसाल है। आज एक गीत हमने निकाल कर आप तक पेश किया है लेकिन तमाम नगमाएं ये फिल्म का बहुत खूबसूरत है। 1972 का मूवी फिल्म परछाइयां का नगमा पेश किया है। 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनोलो, 9 बजकर, दिस इज यूआर दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार, रतन का प्यार भरा नमस्कार और राह पर से दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। समीर का लिखा हुआ गीत दर्द भरा और दर्द भरे आवाज गुलाम अली जी का पेश करने जा रहा हूं, हियर ऑन यू आर।

इश्क में तो हर चीज मिट जाती है और बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। बस याद याद याद याद रह जाती है। आपको फैसला करना पड़ेगा कि अगर छूट गए तो क्या करना है, छोड़ दें, भूल जाएं, नई जिंदगी शुरू करें, या तो फिर आप उस प्यार में डूबते रहते हैं, उसे फिर वापस हासिल करने में पूरे अपनी जिंदगी बिता देते हैं। फैसला आपके हाथ में है। फिलहाल तो ये था ये दर्द भरा नगमा, समीर का लिखा हुआ एक एक शब्द, गुलाम अली जी का गाया हुआ फ्रॉम द मूवी बेवफा। सत्या जी प्रणाम से जुड़े हुए हैं। एकदम सदम सत्या जी, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। और स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी भी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ। एट सुतमेर हमारे प्रिय स्वागरी जी, हंस लक्ष्मण सिंह जी, आइलिन जी एट हार्लेम, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, थैंक यू वेल कि आप ही चून किए हुए हैं। और मिक जी एट डनहाग, थैंक यू वेल मिक आपके सपोर्ट और पावर के लिए। आईफी जो सदा मेरा साथ हमेशा दे रहे हैं, आईफी जी थैंक यू वेल आप कैप के लिए। और साथ भी जो हमेशा दिए हैं, और उम्मीद और आशा करते हैं कि इन दोनों की आशीर्वाद हम पर सदा रहे। हेरवाल्डो जी और मार्खरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेल। ये वेट एक दिन खालते था यूली। भैया राजेश सिंह जी एट रोटरडम भी एंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत नगमाए के साथ, काफी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और रोटरडम स्किदाम का मफरा रोहिणी कल्लू जी, थैंक यू वेल आप कैब के लिए, आप ही भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सबको बताने के लिए, ऐप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और अलका याग्निक का एक नगमा पेश करने जा रहा हूं। इंदवर का लिखा, इंदवर मेरे प्यारे से नालो, इस खीन मामूली राइटर ना है, कवि ना है, इनकी हाथों से इतने सारे खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है, और इनका प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर में हम सजा चुके हैं। Ik weet het niet meer, 2 of 3 jaar terug, misschien wel 4 jaar terug, I don't know. Ik ga het nog een keer wel herhalen, maar planning moet ik hem krijgen. Dekte hij kap, mokka fir milta hai. Filhaal to, Indwar ji ka likha hua geet, Udit Narayan aur Alka Yagnik, pesh karta hun seva mein. Hey, hum safar, Dil ke nagar, सपने चलो हम सजाएं।

De qui è una? De qui è una pighal jaungi? Chuna mujhko sanam tum me dar jaungi. O hum safar dil ke nagar aur sapne chalo hum sajaye kyunki tum paas ho to hum kahin aur kho jaye. खूबसूरत गीत नीरज जी का लिखा हुआ मेरे प्यारे सुनो और रोमांटिक सॉन्ग द ग्रेट नीरज जी का लिखा हुआ और अलका याग्निक और ड्रीम द स्पेल्स मैजिक उदित नारायण की आवाज फरीब फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनो वालों अंबिका और रीता जी अथफियाना भी प्रणाम से जुड़े हुए हैं थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए और आप भरपूर एंजॉय करें दिल की आवाज हियर ऑन यू आर नाइटिंगेल आशा जी को पेश करता हूं द ग्रेट महान कवि सॉन्ग राइटर इनके बराबर और कोई शायद हो या ना हो पाठ हम कर रहे हैं आनंद बख्शी जी का इनका लिखा हुआ गीत नंदगिल आशा जी की आवाज कि तुम्हें देखा है तो ऐसा लगता है कि अब ये जवानी गुजर जाएगी

तुम्हें देखा है तो ऐसा लगता है कि अब ये जवानी गुजर जाएगी। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी, महान कवि सॉन्ग राइटर आनंद बख्शी जी, इनके हाथों से लिखा हुआ गीत द ग्रेट नाइटिंगेल आशा जी ने गाकर सुनाए हैं हियर ऑन दिल की आवाज में। फिल्म का नाम मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। स्वागरी सरवन नाइक जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं लेडे शहर का। स्वागरी सरवन जी, थैंक यू वेल सरवन नाइक जी आपके ऐप के लिए। आप भरपूर एंजॉय करें दिल की आवाज, आप भरपूर एंजॉय करें यू आर उजाला रेडियो। और अगले गीत की ओर जो समीर ने लिखा कि तू चाहत है, तू धड़कन है और मेरी आरज़ू है, मेरा जिगर है।

तू चाहत है, तू धड़कन है, मेरी आरज़ू है और खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों सेवा में जो हमने आप तक पेश किया है, विजय बेनेडिक्ट और अलीशा चिनॉय, समीर का लिखा हुआ नगमा, दोनों ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम प्यार का साया। दिस इज यूआर मेरे प्यारे सुनने वालों, और ले चलता हूं आपको अगले गीत की ओर। और ये दिल जो है मेरा तुम सभी पर आ गया है। खूबसूरत गीत अनुराधा पौडवाल और अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाजों में पेश करता हूं। ये भी समीर का लिखा हुआ गीत है मेरे प्यारे जिन वालों, एंजॉय एंड रिमेंबर दिस इज यू आर उजाला रेडियो।

दिल तुझ पे आ गया और क्या नशा छा गया। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो, जो सेवा में पेश किया गया है समीर का लिखा हुआ, अनुराधा पोडवाल और अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाजें। फिल्म का नाम यह बात इस फिल्म में लग ओ दिल है के मानता नहीं। मेरे प्यारे सुनो, इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जाएंगे, उसके बाद ब्रेक होंगे वो भी 10 बजे का, और 10 बजे के बाद सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम दिल की आवाज। आज पुराने गाने बहुत कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आखिरी घंटे में कुछ पुराने गाने भी शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे, वादा नहीं करता हूं, क्योंकि जिस तरह से प्रोग्राम हम सजा रहे हैं इस वक्त काफी लोग पसंद कर रहे हैं। जुस्सा नहीं कि तो अपनी तोड़ खान। फैज अनवर जी का लिखा हुआ एक दर्द भरा गीत, विनोद राठौड़ की आवाज, और इस गीत के साथ इस घंटे को हम आगे आएंगे। ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। यूसुफीन धंकीवाल आपके ऐप के लिए। Enjoy you are. और भैया टोनी इसरी जी अटल मेरा धंकी वाला आपके लिए।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Formaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht heb je tussen afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नहीं मरना गवारा प्यार में तुमसे ये कहना है तुम्हें भी जिंदा रहना है मुझे भी जिंदा

या 14 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी 10 बजकर फिर 3 मिनट ओवर द क्लॉक फन 3 हो चला है। ये है आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और रोमांटिक सॉन्ग्स और उनके साथ साथ भी कुछ दर्द भरे नगमाएं सेवा में जो पेश हो रहे हैं, काफी लोग सुनते वक्त भी एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग ये कष्ट भी उठाते हैं कि वो ऐप कर रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद, थैंक यू वेल, शुक्रिया आप सभी के ऐप के लिए। ये था नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, देव खोली और इब्राहिम आशिक जी का लिखा हुआ, कि हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बरी तूफानी, लेकिन तू डरना ना ओ मेरी रानी। फिल्म का नाम आप मुझे अच्छे लगने लगे। मांगी है हमने दुआएं, महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ एक टॉप रोमांटिक सॉन्ग, लेकिन ऐ खलक ये बहुत रोमांस हो रहे हैं, लेकिन ये एक दर्द भरा नगमा, ऐ खलक एक दर्द भरा नगमा है। और ये गीत जो हम पेश करने जा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ, फ्रॉम द मूवी सुन मेरी लैला, 1993 का जो फिल्म है, 1983 का फिल्म, थैंक यू वेल, थैंक यू वेल, 1983। और ये नगमा पेश करने जा रहा हूं आवाज का जादू अशोक खोसला, मेरे प्यारे सुनने वालों, व्हाट अ सॉन्ग, ब्यूटीफुल, ईयर ऑन यू आर।

सितारों में ये चमक तुमसे है और फूलों में ये महक तुमसे है। इधर देखिए उधर देखिए, तुम ही तुम बसे हो जिधर देखिए। हाँ, होता है प्यार में अगर आप इस तरह से प्यार में डूबे हुए हैं तो जिस तरह भी आप देखेंगे नजर आएंगे वही। धड़कन में तुम समाए रहो और ख्यालों में तुम छाए रहो, लहरों में तुम मचलते रहो और सांसों के साथ चलते रहो। मांगी है हमने दुआएं कि तुमसे मोहब्बत निभाएं, क्योंकि तुम्हारे ही लिए, एंड इट इज ट्राइफल आख्तर, तुम्हारे लिए ही दुनिया में आए और तुमको ही अपना बनाए। महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुनो वालों, और खूबसूरत गीत, खूबसूरत अल्फाज, इतनी रोमांटिक, अशोक खोसला जी का गाया हुआ। फिल्म का नाम सुन मेरी लैला। ये उजाला रे जो है मेरे प्यारे सुनो वालों, 8 मिनट बाकी है सरे 10 बजने में, जबकि हम आपको ले चलेंगे समीर का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग, द टाइगर ऑफ बंगाल, कुमार सानू और साधना सरगम जी की आवाजें, कि एक बात बताऊं तेरे पास मैं आऊं, क्योंकि जब से तुझको देखा है तेरी यादों में खो जाऊं।

एक बात बताऊं बताओ, तेरे पास मैं आऊं आ जाओ, क्योंकि जब से तुम्हें देखा है और तेरी यादों में इतने खो गया हूं। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ, द टाइगर कुमार सानू और साधना सरगम जी की आवाजें, मिलन फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, मिलन मफरहो एन मनीर बिहारी जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। एन नतुलक, आप सही कह रहे हैं कि समीर के हाथों से कितने सारे खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है। यकीनन इसकोन इफेक्ट और इंस्पिरेशन इनका बड़े जो पिता है अंजान साहब जी, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं। एंड दैट्स नॉट इट वेल, क्योंकि अंजान जी के हाथों से इतने सारे खूबसूरत नगमा लिखा गया है जो हम पसंद करते हैं। तो समीर उनका जो सुपुत्र है, या दिहेफल पापा जी को एवनार कर दिया है, शायद उनसे भी कुछ ज्यादा आगे निकल गया है। मेरे प्यारे सुनो, मफरा मनीर बिहारी दंकली वेल, आप कैब के लिए मैं गीत की ओर बढ़ चलता हूँ। कुलवान जानी जी का लिखा हुआ एक पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग, अगर आप इस गीत को पसंद नहीं करेंगे तो फिर हम छोड़ देंगे प्रोग्राम बनाने। हाँ जी, आवाज का जादू, संगीत की देवी लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार, कुलवन जानी जी का लिखा हुआ ये पॉपुलर सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं।

पलकों की चिलमन जो गिर जाए तो देखती है आंखें मेरी तेरे सपने, और छोड़ के ना जग में अकेले मुझको, दूर मेरी नजरों से जाना ओ सनम, क्योंकि इसी में छुपी है मेरे दिल की खुशी, आज मेरे साथ साथ खाओ ये कसम। दो है ये बदन मगर एक जान है, सच्चे प्रेमियों की यही पहचान है, प्रेम भरा ये प्यार भरा खूबसूरत नगमा और अल्फाज़े जो कुलवन जानी जी ने लिखा, संगीत की देवी लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की खूबसूरत आवाजें। फिल्म का नाम एक लड़की बदनाम सी, एक लड़की बदनाम सी सहम नगमा को निकाले। मेरे प्यारे सुन लो, आप सुन रहे हैं धुन, इसी धुन से प्रणाम को आराम किए हैं आज, और वो भी 8 बजे। और मैंने आप सभी से कहा है कि रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे। तो आखिरी घंटे में आखिरी गीत का वक्त आ गया है, समीर का लिखा हुआ नगमा फ्रॉम द मूवी दिल, साधना सरगम और द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण। मेरे प्यारे सुनो, आने वाले शनिवार 18 तारीख प्रणाम पेश करने नहीं आएंगे, दम्बे ने करनी थी, सैटरडे नाइट फीवर लेकर नहीं हाजिर रहेंगे। आप सभी से फिर हम मिलेंगे 22 तारीख 20 जुलाई को, वो भी वुंसख बुधवार के रात्रि को, जबकि हम पेश करेंगे प्रणाम बैक टू द फ्यूचर। रहा फूल तो फिर खिलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

एक्चुअली सुनने वालों, हम प्रोग्राम में एक नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं और भी संजय जोधा के आवाज में पेश किया जा रहा है. एन संजय जोधा ओक अवेजिग ऑफ 29 एंड 30 अगस्त उजालास ब्रासा फेस्पर इंडिया इवेंट सेंटर. संजय जोधा मेट एक्सक्लूसिव.